वामन प्रांशुरमोघ सुचिरूर्जित अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महा

नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पांडव सोहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ओं नमेति व्यासोवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि।

नमस्ते चेन्नई, आप सुन रहे हैं 107.8 FM, आर रेडियो, आर कम्युनिटी, आर प्राइड। जैसे हर दिन की शुरुआत भगवान को याद करके करते हैं, आज भी चलो हम थोड़ा भगवान को याद कर लें।

0: सर्वदा।
1: हो गया भगवान को याद करना, जैसे SRK ने कहा है, प्यार दोस्ती है, और प्यार दोस्ती के बिना तो प्यार बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है। तो अभी मुस्कान हमें एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही है।
2: प्यार तो बहुत लोग करते हैं, किस्मत वाले तो वो होते हैं जो प्यार खोने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो आज की ये कहानी सिमरन और राहुल की है। सो प्यार क्या होता है? प्यार लफ्जों के सिवा बहुत कुछ होता है, जो मैं गाने के द्वारा आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ।

0: राहुल और सिमरन दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे। राहुल को सिमरन बिल्कुल पसंद नहीं थी और सिमरन को भी राहुल बिल्कुल पसंद ना था। जब भी मौका मिलता एक दूसरे को नीचा दिखाने में रहते। पर एक दिन क्लास में एक ड्रामा के प्रैक्टिस में वो दोनों को चूज किया गया था। दोनों के बीच में दोस्ती हुई, दोनों साथ में स्कूल जाते, फिर कॉलेज भी साथ में की। कॉलेज के बाद राहुल को अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना पड़ा। सिमरन ने उसका आने तक का इंतज़ार करने का फैसला किया। सिमरन का परिवार नहीं माना। सिमरन की ज़बरदस्ती शादी कराई गई किसी और लड़के से। जब तक राहुल आता उसकी शादी हो चुकी थी। फिर भी राहुल आया, उसको पता लगा कि सिमरन की शादी हो चुकी है। उसने सिमरन को मिलने की बहुत कोशिश की पर सिमरन उससे कभी मिलने नहीं गई। 6 महीने बाद सिमरन ने खत लिखा राहुल को, बड़ी मुश्किल से बनी हूँ टूट जाने के बाद, मैं आज भी रो देती हूँ मुस्कुराने के बाद, तुझसे मोहब्बत थी मुझे बे इंतहा, लेकिन अक्सर ये महसूस हुआ तेरे जाने के बाद, अब तक ढूंढ रही हूँ अपने अंदर के उस शख्स को जो नज़र से खो गया है नज़र आने के बाद। राहुल ने भी फिर दूसरी शादी कर ली। राहुल ने फिर कभी सिमरन को मिलना ना चाहा। फिर राहुल को एक बेटी हुई जिसका उसने नाम सिमरन रखा और सिमरन को एक बेटा हुआ जिसने उसका नाम राहुल रखा। एंड द लव कंटिन्यूज।
1: राहुल और सिमरन की कहानी तो अधूरी रह गई मगर उनका प्यार कभी नहीं गया। उन्होंने अपने बेटों और बेटी में अपने प्यार को ढूंढ लिया और अपने बेटे और बेटी का नाम अपने प्यार का नाम रख दिया। पहला प्यार हमेशा ऐसा होता है और पहले प्यार को भूलना बहुत मुश्किल होता है। आप भी अगर किसी को प्यार करते हो तो उनको जाके बता दो यार, अगर पहला प्यार नहीं मिला तो फिर क्या पता दूसरा मिले ना मिले। तो अभी हम एक प्यारी सी कविता सुनेंगे सुमन के द्वारा,
2: हमारी अधूरी कहानी। अगर कोई पूछे कि जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी और जो भी पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ते हैं मेरे और भगवान के बीच में, ज्यादा मैं मांगती नहीं और कम वो देता नहीं।
1: तो सुमन ने सुनाई हमें एक प्यारी सी कविता, आप थोड़ी शायरी सुन ले। अभी जया और गिरिजा हमें थोड़ी शायरी सुनाएंगी।
3: तुमने कुछ कहा भी नहीं और मैंने सब सुन लिया, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि यकीन अपने आप का करूं या तुम्हारा।
4: जब बोलोगे तब आ जाएंगे पर बुलाओ तो सही, जो कहोगे वो ही बन जाएंगे मगर जरा बताओ तो सही। देखा है तुम्हें इंतजार में पलके बिछाए हुए, पर जब मोहब्बत हो गई तो पलके उठाओ तो सही।
3: दोस्ती की राहों में कभी अकेला पन ना मिले, ए दोस्त जिंदगी में तुम्हें कभी गम ना मिले, दुआ करते हैं हम खुदा से तुम्हें जो भी दोस्त मिले हमसे कम ना मिले।
4: उदास ना हो क्योंकि मैं साथ हूँ, सामने ना सही पर आस पास हूँ, बस दिल से ये याद करना मैं कोई और नहीं बस तुम्हारी प्यारी दोस्ती का एहसास हो।
3: तुझे याद कर लिया है इनायत की तरह, अब तेरा जिक्र होगा इबादत की तरह।
1: आप सुन रहे हैं MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8 FM, आर रेडियो आर कम्युनिटी आर प्राइड। थोड़ी शायरी सुन ली, थोड़ी मजाक कर लिया, थोड़ी एक कविता भी सुन ली और एक कहानी भी। अभी मानसी हमें थोड़े प्यारे थोड़े नमकीन चुटकुले सुनाने जा रही है।
5: बाप ना लाइक, कभी तुमने अपनी कोई बुक खोल कर भी देखी है?
6: बेटा हाँ पापा, रोज खोलता हूँ ना एक बुक।
5: बाप कौन सी?
6: बेटा
5: फेसबुक।
6: संता फिल्म देखने गया लेकिन वो फिल्म का बोर्ड ही देखा, वापस आ गया क्योंकि उस फिल्म का नाम था हाउसफुल। फास्ट फूड खाने से आदमी फास्ट नहीं हो जाता लेकिन लूज मोशन होने से लूज जरूर हो जाता है। घर का टीवी बिगड़ जाए तो माता पिता कहते हैं बच्चों ने बिगाड़ा है, बच्चों ने बिगाड़ा है, और अगर बच्चे बिगड़ जाए तो कहते हैं टीवी ने बिगाड़ा है। अरे दया, रात को मोबाइल चार्जिंग में मत रखो, ब्लास्ट हो जाएगा। टप्पू के पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैंने बैटरी निकाल दी है।
7: जाएगी।
8: ने कभी सोचा है मिर्च आँखों के अलावा और कहाँ कहाँ लगती है? सोचिए सोचिए, खेतों में लगती है। पढ़े लिखे गवार हमेशा बस उल्टा सोचियो।
1: तो आज का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त हुआ। आई होप आप सब लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप सुनते रहिए MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8 FM। आर रेडियो, आर कम्युनिटी, आर प्राइड। दिस इज RJ रितिका साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।